0: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
1: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fasts and du'as. Ameen.
2: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
3: Rishta Networking. आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन घबराइए नहीं। इंस्पायर एफएम रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमत पेश कर रहा है। 12 सितंबर बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सपहर 4:30 बजे तक एम्बरली गार्डन मार्की गोर्स फार्म हाई रोड बेडफर्ड MK453AB में सिर्फ खवातीन की नशस्तों का एहतमाम किया गया है जिसमें आप अपने अजीज व अकारब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद नशस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर FM के साथ।
4: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
5: Are you looking for a guaranteed return on investment? With One Ummah's ongoing Sadaqah Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.oneummah.org.uk.
6: हक की आवाज़ कभी दबती नहीं, कभी झुकती नहीं, कभी मिटती नहीं। एतदाल, हुर्रियत फिक्र और सच्चाई का परचम। आइए सुनिए वो आवाज़ जो दलील से लबरेज, कुरान और सुन्नत की रोशनी से मुनव्वर और हक की गवाही देती है। मैं हूँ इमाम हाफिज इजाज़ अहमद, आपके सामने पेश करूँगा प्रोग्राम आवाज़ हक में। हक की आवाज़, एक ऐसा पैगाम जो दिलों को बेदार करे, जहनों को रोशन करे। हर सोमवार 11 बजे ओनली ऑन इंस्पायर FM 105.1।
7: From the studios of Inspire FM, the time is now 8:30.

0: कहो मुझे अल्लाह की गिरफ्त से कोई नहीं बचा सकता और न मैं उसके दामन के सिवा कोई जाए पनाह पा सकता हूँ। मेरा काम इसके सिवा कुछ नहीं है कि अल्लाह की बात और उसके पैगामात पहुँचा दूँ। अब जो भी अल्लाह और उसके रसूल की बात न मानेगा उसके लिए जहन्नम की आग है और ऐसे लोग उसमें हमेशा रहेंगे। उसके पैगामात पहुंचा दूं,
1: यानी मेरा ये दावा हरगिज नहीं है कि खुदा की खुदाई में मेरा कोई दखल है या लोगों की किस्मतें बनाने और बिगाड़ने का कोई इख्तियार मुझे हासिल है। मैं तो सिर्फ एक रसूल हूं और जो खिदमत मेरे सुपुर्द की गई है वो इससे ज्यादा कुछ नहीं है कि अल्लाह ताला के पैगामात तुम्हें पहुंचा दूं। बाकी रहे खुदाई के इख्तियारात तो वो सारे के सारे अल्लाह ही के हाथ में हैं। किसी दूसरे को नफा या नुकसान पहुंचाना तो दरकिनार, मुझे तो खुद अपने नफा व नुकसान का इख्तियार भी हासिल नहीं। अल्लाह की नाफरमानी करूं तो उसकी पकड़ से बचकर कहीं पनाह नहीं ले सकता और अल्लाह के दामन के सिवा कोई मलजा व मावा मेरे लिए नहीं है।
0: उसमें हमेशा रहेंगे,
1: इसका ये मतलब नहीं है कि हर गुनाह और मासियत की सजा अबदी जहन्नम है, बल्कि जिस सिलसिले कलाम में ये बात फरमाई गई है उसके लिहाज से आयत का मतलब ये है कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से तौहीद की जो दावत दी गई है उसको जो शख्स न माने और शिर्क से बाज न आए उसके लिए अबदी जहन्नम की सजा है।
2: إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا
0: یہ لوگ اپنی اس روش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے۔
1: इस आयत का पस मंजर यह है कि उस जमाने में कुरैश के जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत इल्लाह को सुनते ही आप पर टूट पड़ते थे वो इस जोम में मुब्तला थे कि उनका जत्था बड़ा जबरदस्त है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चंद मुट्ठी भर आदमी है, इसलिए वो बआसानी आपको दबा लेंगे। इस पर फरमाया जा रहा है कि आज ये लोग रसूल को बेयारो मददगार और अपने आप को कसीर तादाद देखकर हक की आवाज को दबाने के लिए बड़े दिलेर हो रहे हैं, मगर जब वो बुरा वक्त आ जाएगा जिससे इनको डराया जा रहा है तो इनको पता चल जाएगा कि बेयारो मददगार हकीकत में कौन है।

खिलाफ बोलते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो उनको फौरी सजा नहीं देता। ये क्यों नहीं देता? क्या वो दे नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता? दे सकता है, लेकिन चूंकि वो रहमान है इसलिए वो उनको छोड़े रखता है और उनका वो वक्त पूरा करने देता है। अब आप देखिए, दुनिया में जब इंसानों के पास थोड़ी सी भी अथॉरिटी आती है तो किस तरह बिहेव करने लगते हैं, आप इसको बताएगा किस तरह बिहेव करते हैं? अथॉरिटी के मुख्तलिफ दर्जे होते हैं ना, किसी के पास थोड़ी होती, किसी के पास उससे ज्यादा, किसी के पास बहुत ही ज्यादा। माँ के पास अथॉरिटी, सारा दिन बच्चों को डांट डपट करती रहती। और दुनिया में आप देखें अथॉरिटी की मिसालें, मसलन दुनिया में मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनमें हर तरह के हैं, कोई थर्ड वर्ल्ड है, कोई उससे ऊपर है, कोई ओप्रेशन एंड प्राइड। तो जिसके पास जितनी अथॉरिटी आती जाती है ना, उसका गुरूर और उसका तकबर उतना ही बढ़ता चला जाता है, और फिर वो समझता है उसे कोई पूछने वाला नहीं, वो जिस पे जितना चाहे जुल्म ढाए, जो मर्जी करे, ऐसा होता ना। और बाज़ औक़ात वो ये नहीं देखते कि किसको तकलीफ होगी और किसको आराम होगा और किसके साथ जुल्म होगा और किसके साथ इंसाफ होगा, वो जो चाहे करते हैं। लेकिन अल्लाह सुबहान तआला ऐसा नहीं करता। आप देखें कि जिन लोगों के पास ताकत और कुव्वत होती, जब उन्हें पता चलता है कि फलां हमारे खिलाफ है, तो वो क्या करते हैं? फौरन पकड़ने की करते हैं। लेकिन अल्लाह सुबहान तआला के खिलाफ कितने लोग हैं? दुनिया भरी पड़ी ऐसे लोगों से जो अल्लाह को मानते ही नहीं, या उसके साथ शिर्क करते हैं, या उसका हक नहीं देते, या उसकी इताअत नहीं करते। लेकिन इसके बावजूद वो क्या कर रहा है? उनको खाने पीने दे रहा है या नहीं? फायदा उठाने दे रहा है? हंसने दे रहा है? भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दुनिया पे अपनी मर्जियां मनमानियां कर रहे हैं? ये क्यों है? इसलिए कि वो रहमान है। लेकिन इस सब की एक लिमिट और हद है, तो उसकी अब एक और किस्म की रहमत है, और वो है खास, स्पेशल, खास रहमत। और उसके लिए यहां लफ्ज आया है अर्रहीम, जो फाइल के वजन पर है। और रहीम का मतलब होता है बार बार और मुसलसल रहमत करना, हमेशा रहमत करना। और ये हमेशा की रहमत फिर उसके सिर्फ फरमा बरदार बंदों के लिए होगी। अल्लाह सुबहान व तआला की रहमत के 100 हिस्से, जिसमें से एक सिर्फ दुनिया में है और 99 क्यामत के दिन। लेकिन ये 99 उनके लिए अब रह जाएंगे जो उस पर ईमान लाते, जो उसको मानते, जो उसकी इताअत करते, लेकिन फिर गलतियां करते, तो वो अपनी रहमत के साथ उनको माफ करेगा। और बावजूद इसके कि उनके अंदर गलतियां होंगी, फिर भी उनको माफ करके उनको जन्नत में दाखिल करेगा। तो ये होता है अर्रहीम। तो क्या फर्क है दोनों में? दोनों के अंदर आप देखें रूट एक ही है, राहा मीम एक ही है ना। क्या क्या बातें पता चली? नंबर एक कि रहमत अल्लाह की सिफत। नंबर दो, रहमत की दो किस्में, रहमत खास और रहमत आम। नंबर तीन, रहमत के 100 हिस्से, एक दुनिया में 99 आखिरत। नंबर चार, उसकी रहमत दुनिया में सब के लिए आम है, लेकिन क़यामत के दिन किसके लिए खास होगी? ईमान वालों के लिए। तो अर्रहीम वो मुसलसल रहम करता रहेगा आखिर तक, किस पर? ईमान वालों पर। अल्लाह की तारीफ क्यों? क्योंकि वो मालिक कायनात होने के बावजूद बेहद मेहरबान है। समझ आ गई रहमान रहीम की? अब आप बताइए, नंबर एक रहमत अल्लाह की सिफत, रहमत की दो किस्में कौन कौन सी? खास और आम, 100 हिस्से, एक दुनिया में और 99 आखिरत। फिर दुनिया में उसकी रहमत सब के लिए, फाइल के वजन पर, फाइन या लाम फाइल, जैसे करीम। आई नो के इट्स कबल अज वक्त, टू अर्ली कि इस तरह की बातें मैं आपसे करूं, लेकिन बात यह है कि इसके बगैर फिर वो गौर व फिक्र हो नहीं सकता। और इतने लफ्ज आपको आते भी हैं, मसलन करीम आता है, सबको मालूम है ना करीम लफ्ज, अजीम। कोई और लफ्ज बताइए फाइल के वजन पर। आप पढ़ते हैं शायरी, ओके, शेर जब पढ़ते हैं तो उसके आखिर में क्या होता है? राइम होती है ना, वजन होता है ना, वजन, बस वही वजन है ये शेर का वजन। शेर कब बनता है? जब उसके आखिरी लफ्ज एक जैसे होते। लेकिन उर्दू में आप देखिए वो बस ऐसे तुक्का बंदी से एक एक जैसे लफ्ज लगा लेते हैं, उनके मीनिंग में वो सिमिलैरिटी नहीं होती,
अरबी में जब वजन आता है तो मीनिंग की सिमिलैरिटी

0: है तो फिर इमेजिनेशन भी बढ़ती जाती है, फिर अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस में आप अपने साथ सच बोलना शुरू कर लेते हैं। मुझे बचपन से लोग कहते थे आप ये इसमें बड़े अच्छे हैं, उसमें बड़े अच्छे हैं, जवानी में कहते थे आप ये हैं, आप वो हैं, आप फलां हैं। मुझे अंदर से पता था ये जो भी कह रहे हैं ये ऐसा नहीं है, मुझे पता है कितना मैं हूँ, किस योगा में हूँ और बाकी किस तरफ मुझे काम करना है और मुझे किस, जैसे मैं क्रिकेट खेलता था सब कहते थे आप बहुत अच्छा खेल सकते हैं, आप ये कर सकते हैं वो, मुझे एग्जैक्ट पता था कि मैं इससे आगे नहीं जा सकता, एक हद तक मेरी एबिलिटी है, इससे आगे वो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो मुझ में नहीं है, वो फिज़िकल स्ट्रेंथ नहीं है या टेक्निक नहीं है, या तो फिर मुझे वहाँ रोक कर किसी और तरफ सोचना था। मैं इस तरह नहीं कर सकता था मैं खेलता रहूँ और अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर लूँ इस सोच में कि मैं एक दिन पाकिस्तान टीम में चला जाऊँगा, आई वॉज़ नॉट दैट गुड, सिंपल। इस तरह बाकी मैंने कुछ और चीज़ें ट्राई की, आर्मी में गया, कुछ और चीज़ें मैंने देखी, सिविल में कुछ काम किए मैंने, मैंने देखा, फिर एक दिन मैं इस चीज़ें करके छोड़ता चला गया और यू नो चीज़ों को ट्राई करता गया। लोग जो कह रहे थे कि वक्त ज़ाया हो रहा है उन्हें कुछ पता नहीं था, लोग जो कह रहे थे कि आप इसमें अच्छे हैं उसमें बुरे हैं उनको कुछ पता नहीं था, यू नो लोग जो है ना वो बहुत लगता है उन्हें पता है बट इतना उनको पता नहीं होता, वो लगता है कि वो समझते हैं लेकिन वो इतना समझते नहीं जितना आप समझते हैं, क्योंकि आप सिचुएशन के अंदर होते हैं और आप ऑनेस्टली सिचुएशन को देख रहे होते हैं और आप दीवाने का ख्वाब नहीं देख रहे होते, आप हाजिर रहते हैं, माइंडफुल रहते हैं और आप प्रैक्टिकल होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं, फिर लोगों की बातों में आप नहीं आते। एक वक्त के बाद जब आप ये सारी चीज़ें सीधी कर लेते हैं, फिर जब आपसे लोग कहते हैं ना आप ये कर सकते हैं तो मैं कहता हूँ चलिए ट्राई कर लेते हैं, तो फिर जब मुझे किसी ने कहा कि आप एक्टिंग कर सकते हैं मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं, आप राइटिंग कर सकते हैं मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं, मुझे ये भी किसी ने पहली दफ़ा कहा था आप रेडियो बड़ा अच्छा कर सकते हैं, तो मैं फिर डैलस में आया तो मैंने कोशिश की चलो रेडियो करने की कोशिश करते हैं तो वो बड़ा अच्छा हो गया। इसी तरह मुझे किसी ने कहा था आप लिख बहुत अच्छा सकते हैं, ये आशा जी ने कहा था बाय द वे, स्टेज प्ले वाला हमने किसी से लिखवाया था, उल्टा सीधा था, उल्टी सी मैं ये चीज़ करवाना नहीं चाहता, तो उन्होंने कहा था ऑनेस्टली आई थिंक यू कैन राइट सो मच बेटर देन दिस आज़ाद। और दिन थे नहीं मेरे पास, कुल 4 दिन रह गए थे, उसमें जी लैंड कर चुकी थी सैन फ्रांसिस्को में, तो अब मुझे ही लिखना था, तो जब मैंने लिखा तो वो जिस तरह लिखा गया जिस तरह फ्लो आया उसके अंदर मुझे भी मज़ा आया, तो फिर हमने दूसरा लिखा, फिर उसके बाद तीसरा चौथा लिखा, फिर यही तरीका था ऑब्जर्वेशंस को लोगों तक पहुँचाने का, फिर जितने बड़े प्लेटफॉर्म पर जाके आपने ये काम करना था आप साथ साथ प्रिपेयर करते जाते अपने आप को, उस पर काम करते जाते हैं मेंटली फिजिकली और यू नो उस क्राफ्ट के ऊपर, फिर एक दिन आता है जब आप सही राइट टाइम एंड स्पेस में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसके लिए आपको रेडी होना चाहिए। तो वो फिर जब हम रेडी हुए तो पहले उस्मा गिलानी वाला आया, फिर नुमान एजाज का आया, फिर अभी एक दो और चीज़ों के लिए हम तैयारी पकड़ रहे हैं पिछले 3-4 साल से, अब माइंड बन गया हमारा तो अब सब कुछ सामने आ जाएगा खुद ब खुद। तो दिस इज़ हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स, और कैसे कैसे आप ये तमाम चीज़ें देख सकते हैं मेरी ज़िंदगी की जो सारी चीज़ें जो मैं शेयर करता हूँ, इसलिए कि आपको मैनिफेस्टेशन नज़र आ सके, इसलिए कि एक आम सा आदमी आम से तरीके से आम से यू नो छोटे से टैलेंट के साथ अगर ये चीज़ें कर सकता है तो ज़्यादातर लोग जिनको मैं जानता हूँ वो मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, मेरे से ज़्यादा बहादुर हैं, मेरे से ज़्यादा जो है उनका टैलेंट है वो, मेरे से ज़्यादा उनके पास गिफ्ट है और मेरे से ज़्यादा ज़िंदगी है उनके अंदर, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दे हैव मोर लाइफ देन आई हैव इनसाइड ऑफ मी, और उनकी जो ख्वाहिशात हैं वो भी बहुत ऐसी हैं कि जिसके लिए उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए ज़िंदगी में, तो फिर मैं ये करके उनको सिर्फ दिखा देता हूँ कि वो जहाँ तक जाना चाहें, जितना गुड़ डालें उतना मीठा हो सकता। मैं सांस ले लूँ?
1: हाँ ले लिया।
0: क्या सीखा आपने?
1: बहुत कुछ सीखा आज मैंने।
0: आपको हर दफा ये लगता है कि इतना सीख लिया अगली दफा क्या सीखूंगी, फिर आपको लगता है नहीं आज सीखा हमने।
1: नहीं आजादा मैं अभी जो बात कर रहे थे आप, तो माशाल्लाह आप बहुत आर्टिस्टिक हैं, तो आर्टिस्ट की डेफिनेशन क्या है एक्चुअली?
0: पहले तो आर्टिस्ट वो होता है जो पहले थोड़ा सा ऑटिस्टिक हो। समझ रहे हैं? आर्टिस्ट जो होता है ना वो पोएट एट हार्ट होना या आर्टिस्टिक होना, कई दफ़ा जिस एनवायरनमेंट में हम हैं ना, हम इतने बदकिस्मत एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं कि आर्टिस्ट से शुरू में ही लोग डर जाते हैं, उसको नाजुक समझना शुरू हो जाते हैं, उसका मजाक उड़ाना शुरू हो जाते हैं। आप कोई बंदा, जब हम बड़े हो रहे थे तो कोई बंदा FSC में अगर साइंस के बजाय आर्ट्स ले लेता तो सारे उसको पहले से ही वीक समझना शुरू कर देते थे, ठीक है? तो मैं, अच्छी बात यह है जो काम मैंने किया अपनी ज़िंदगी में, शुरू में मुझे नहीं पता था ये सब कुछ कि मैं ये यू नो एक्टिंग डायरेक्टिंग राइटिंग पोम्स एंड ये सब कुछ करूँगा, ना मैंने कभी ज़िंदगी में कोई एक लाइन भी लिखी थी, लेकिन मैं जिस प्रोफेशन में, मैं लकी ये था कि मैं जिस प्रोफेशन में गया ना वो प्रोफेशन आपको मेंटली और फिज़िकली साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनाता है, आपको मैनेजमेंट का आदमी बनाता है, आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। आप पहले खुद को मैनेज करते हैं फिजिकली, इतनी मुश्किल वक्त में से आप गुजर,

0: हैं, आपको पता चलता है आप नहीं मरेंगे, और फिर उसके बाद आप उसकी मैनिफेस्टेशन देखते हैं, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता पावर्स दी जाती हैं, और फिर आपके लिए बहुत सारे बंदे हैं जिनका आप को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है, उनकी ट्रेनिंग से लेके उनकी लाइफ पूरी आप मैनेज कर रहे होते हैं। तो जब आप मैनेज करना सीख लेते हैं, ऑफिस को मैनेज करना, किसी आउटफिट को मैनेज करना, किसी बंदे की लाइफ को मैनेज करना, और ये सब आप खुद पर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं खुद पर अप्लाई करना, लेकिन जब आप खुद पर अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। जैसे आप एक यूनिट के या किसी आउटफिट के फाइनेंसिस को हैंडल करते हैं, आप अपने भी हैंडल करना सीख लेते हैं। उसमें 400-500 टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट इलाकों से लोग आए होते हैं, किसी को प्यार से समझाना है, किसी को गुस्से से, किसी को डंडे से, किसी को सजा से, किसी को वर्बल वार्निंग से, किसी को बाकी चीज़ों से। उसके बाद ये सब तरीके भी आप सीखते हैं और अपने आप पे और अपनी फैमिली पे, अपने घर पे अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है, लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, वेट मैनेजमेंट, ये सब मैनेजमेंट्स हैं। जब आप ये सीख लेते हैं मैनेज करना, तो उसके बाद कोई भी चीज़ जब आप क्रिएट करने जाते हैं तो आपको पता होता है, ये मैं चीज़ क्रिएट करने जा रहा हूँ या मैं काम करने जा रहा हूँ, इसमें फंड्स कहाँ से आएंगे, मैं सपोर्ट खुद को कैसे करूँगा, इस वक्त सिचुएशन क्या है मेरी। तो आप मैनेज करते रहते हैं लाइफ को साथ, हर वक्त आप मैनेज कर रहे होते हैं, यही काम है। सो जब आप मैनेज करना सीख लेते हैं तो फिर कब आप पोएम्स लिखते हैं, फिर किस प्लेटफॉर्म में आपने ये पोएम सुनानी है या किस चीज़ का इसको हिस्सा बनाना है, प्ले अगर आप करते हैं, अब आपके पास एक प्लेटफॉर्म है रेडियो का जिसमें सोशल मीडिया भी इन्वॉल्व है, डिजिटल मीडिया भी इन्वॉल्व है, शहर में आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, एक आपने एक चीज़ बना ली है, तो उसमें आप अगर लोगों को मूवीज़ दिखाना शुरू करें तो वो भी चल जाता है काम। अब आप आर्ट एग्जिबिशन करें कि जिस किस्म के हमारे पास लोग हैं वो भी चल जाता है, क्लोज एग्जिबिशन करें वो भी चल जाता है। इसी तरह आप स्टेज प्ले लोग जाके ब्रॉडवे पे जाते हैं, इतने महंगे महंगे $500-500 के टिकट ले रहे होते हैं, $50 में भी आप ब्रॉडवे का एक टाइप का एक शो दिखा सकते हैं जिसमें से बहुत सारी चीज़ें हंसना खेलना और कोई मकसद की बात भी हो सकती है, तो आप स्टेज प्ले कर लेते हैं। इसी तरह आप फिर टाइम मिलता है आपको, आप एक्टिंग करना चाहते हैं तो फिर एक्टिंग असल वाली देखें कि होती क्या है, जुमले पे जुमला बिठा देना या लाइन डिलीवर कर लेना एक्टिंग नहीं होती है। तो इसके लिए फिर मेथड एक्टिंग ट्रेनिंग के लिए एलए गया मैं, वहाँ से फिर मैंने कुछ सीखा, क्योंकि वो स्कूल ऑफ आर्ट एंड थिएटर है, तो उसमें फिर थिएटर कैसे बनता है, उसमें कैसे एक्टिंग होती है, थिएटर की एक्टिंग, फिल्म की एक्टिंग, वेब सीरीज़ की एक्टिंग, टीवी की एक्टिंग, ये डिफरेंट होती है। इसे बड़ी मुश्किल से छोटे छोटे न्यूआंसेस होते हैं, तो आपको उनके साथ एडजस्ट करना होता है। ये करेंगे तो होगा, कोई बंदा भी एक्सपेक्ट नहीं करता, और कोई बंदा भी मुझसे या अपने आप से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि मैं पहले दिन ही बहुत अच्छी नज़म लिख दूंगा, बहुत अच्छा प्ले लिख दूंगा या बहुत अच्छी एक्टिंग कर लूंगा। लेकिन अलॉन्ग द वे, क्योंकि ये पर्सनैलिटी और चीज़ें बिल्ड अप हो रही होती हैं आपके अंदर, वो कैरेक्टर लिखा किसने, मैं नहीं लिखा है, प्रोड्यूस कौन कर रहा है, मैं ही कर रहा हूँ, डायरेक्ट कौन कर रहा है, मैं ही कर रहा हूँ, एक्ट उसमें एक कौन कर रहा है, वो भी मैं कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें ऐड अप करती हैं कॉन्फिडेंस से, और जो भी घबराहट और नर्वसनेस होती है उसको हैंडल करती हैं, और आप एक काम कर जाते हैं और डिसेंट सा होता है, और आहिस्ता आहिस्ता करते जाएंगे तो पहले से दूसरे से बेहतर होता चला जाएगा। जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट एक्टर्स होते हैं जो एक ही काम करते हैं, वो यही काम 15-20-25-30 साल से कर रहे होते हैं, तो ऑफकोर्स उनका काम ज़्यादा रिफाइंड होता है। अगर आप उनके साथ एक जगह हैंडल ही कर लें उस फ्रेम को, स्पेस को, तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। जैसे हमने हाला में किया, वहाँ पे सबसे जूनियर मैं था जो पहली दफ़ा कैमरा फेस कर रहा था, बाकी 15-20 सालों से ये काम कर रहे थे लोग, सो उनकी बहुत सारी फिल्म्स कर चुके थे वो, तो उनके साथ भी काम किया, ठीक ही था, और आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगा कि बहुत बेहतर किया जा सकता था उसमें, कुछ चीज़ों को वरी करने के बजाय अगर मैं और ज़्यादा अच्छी टेक्निक से करता तो और भी अच्छा हो जाता। तो इस तरह ये चीज़ें खुलकर आहिस्ता आहिस्ता करने और खेलने से ये चीज़ें पैदा होती हैं। कुछ लोग लकी होते हैं, शुरू में ही जिस काम के लिए वो पैदा होते हैं उनके हाथ लग जाते हैं, कुछ लोगों को लोग बता देते हैं आप इसमें बड़े अच्छे हैं, उसमें वो काम करते हैं और उसमें वो एक्सेल कर जाते हैं, कुछ लोग अलॉन्ग द वे सिचुएशन एक ऐसी बन जाती है जिसमें आप एक चीज़ का पता लग जाता है कि आप ये काम कर सकते हैं। जैसे ये रेडियो का शो, मुझे तो कभी लगता भी नहीं था मैं शाय आदमी हूँ, मेरी नेचर बड़ी डिफरेंट किस्म की है, प्राइवेट भी बहुत हूँ, तो मैं ये काम कैसे करूँगा, लेकिन करते करते ये भी इतने सालों तक हो ही गया, अभी भी मैं रोज़ इस पर काम करता रहता हूँ बेहतर करने के लिए इसको। तो इसी तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाता है। फिर फिनेस इंसान के अंदर होना, आप खाना बनाते हैं कैसे पेश करते हैं, सफाई सुथराई करते हैं कैसे करते हैं, लोगों के साथ चीज़ों का बैलेंस में, अगर आर्टिस्ट एक बंदा, बेसिकली आर्टिस्ट का काम पता है क्या है, आर्ट क्रिएट करने वाला एक ही है जिसने ये यूनिवर्स बनाई, जिसने ये दुनिया बनाई, वो आपको एक ब्रेन वेव देता है, आप उस ब्रेन वेव के अंडर, इन्फ्लुएंस के अंडर एक चीज़ बनाते हैं, चाहे वो पेंटिंग है, चाहे वो कोई लिखने की चीज़ है, चाहे वो म्यूज़िक का कोई इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो कॉम्पोजिशन है, चाहे वो शायरी है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, उस मोमेंट में आप उस चीज़ को पकड़ते हैं और उसमें आपकी इतनी ज़्यादा से होती नहीं है, आप उसमें से खुद बाहर निकल जाएं और वो चीज़ जैसे है उसको वैसे पेश करने की कोशिश करें, और उसको नोक पलक संवारने में जैसे यू नो एक स्कल्प्टर होता है ना, स्कल्प्टर जो होता है वो स्कल्प्चर बनाते हुए भी, वो किसी ने जब कहा था ना जो मुजस्मा होता है ना वो पहले से पत्थर के अंदर होता है। आर्टिस्ट का क्या काम होता है, वो सिर्फ उसकी जो साइड की फालतू की जो पत्थर है वो हटा देता है और उसके बीच में से वो निकल आता है। तो बिल्कुल इसी तरह आर्टिस्ट का भी एक्चुअल में ये काम होता है कि उसको एक चीज़ है, उसकी ब्रेन वायर्ड होता है एक सर्टन तरीके से, अब उसने उस ब्रेन वेव को पकड़ के उसको कैसे करना है। कुछ लोग बहुत लेज़ी होते हैं इसके साथ, कुछ लोग इसको बहुत एक गिफ्ट को गिफ्ट की तरह संभाल के रखते हैं आखिर तक, तो वो बहुत लंबे अरसे तक कोई चीज़ आपको दे सकते हैं। सो ये चीज़ होती है, कभी ये आपको हिट कर जाती है, कभी आप इसको हिट कर जाते हैं, और कभी एक सिचुएशन ऐसी बन जाती है जिसमें आप एक काम करते हैं और वो काम निखर जाता है और उसमें आपको मज़ा आने लग जाता है। उसमें रेसिप्रोसिटी जो है, लोगों को जो चीज़ उसके एक्नॉलेजमेंट मिलती है उससे आपको डोपामिन इफेक्ट मिलता है और फिर आप चीज़ों को क्रिएट करने लगते हैं। तो ये एक पूरा सफ़र हो सकता है किसी भी आर्टिस्ट का। कैसा था ये वाला आखिरी पॉइंट?
1: बहुत ज़बरदस्त था।
0: कोई पॉइंट मिस हुआ आज?
1: नहीं।
0: ठीक है, ये नाइक्विल हल्की सी रात को लेके अगर ये आदमी कर सकता है तो इसका मतलब है कुछ भी हो सकता है।
1: आपने नाइक्विल और ये हाल है
0: रात को रात को छींके शुरू होगी, तबीयत ऊपर नीचे होगी, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी थोड़ी सी ले ले ताकि सो भी जाए और सुबह का काम अब मैंने नहीं छोड़ना क्योंकि मैंने वादा किया मंडे वेंसडे। तो अगर मैं मंडे वेंसडे को भी नहीं कर सकता, मैंने फ्राइडे ऑफ भी लिया हुआ है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे चार दिन मैंने ऑफ लिए, तीन दिन मैं शो के बारे में और रेडियो के बाकी काम करता रहता हूँ, तो फिर मैंने कहा कम अज़ कम इतना तो कर, इतना करूंगा तो बाकी का काम भी होगा। और बाकी बहुत अच्छी खबरें आने वाली हैं, ये जो मैंने बाकी दिन ऑफ लिए उसमें कुछ खास फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन जो जो मैं कर पा रहा हूँ ना, स्क्रिप्ट के ऊपर कर रहा हूँ, प्लेस के ऊपर कर रहा हूँ, बहुत जल्दी आपको एक बहुत अच्छी अच्छी खबरें सुनाऊंगा, आपका दिल खुशी से गार्डन गार्डन हो जाएगा
1: इंशाल्लाह।
0: ठीक है, और आप इतने दिनों के बाद आए, उम्मीद करता हूँ, और आपने इतना साथ दिया, इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स लोगों के गोश गुजार किए आपने, ठीक है, उनके कानों में से गुजारे, इस तरह उनके कान साफ रहेंगे। और मेरा ख्याल है वो चीज़ नहीं होगी, वो एक दफ़ा उन्होंने जिसको हम जाने लगे आर्मी में, तो उन्होंने कहा जी आपके कान साफ करने लगेंगे, फिर कानों में जैसे सैलाब आ जाता था पानी का, आपको ने कभी कराया है वो?
1: हाँ जी, अजारा वो पहले तो उसी तरह वो पानी डाल के साफ
0: दे, दे, दे वो डैमेज है, ये तो उसके पानी के अंदर केमिकल चीजें होती हैं और इस तरह प्रेशर दे दे के कान का पर्दा फट सकता था, वो बेवकूफी थी करना। आजकल के जमाने में कोई सेंसिबल आदमी वो काम नहीं करता।
1: नहीं, वो पहले जमाने में।
0: और एक और जाहिलों ने काम किया, मेरे दांतों में शायद कहीं कैविटी थी मोलर्स में, उन्होंने उसमें मर्करी डाल दिया। अब जितनी भी मैं नई साइंस पढ़ रहा हूँ वो सब के सब कह रहे हैं कि आपने वो मर्करी निकालना है, और जो मर्करी निकालना है वो मैंने जब डॉक्टर से पूछा तो मैंने कहा ये कैसे निकलेगा, तो उन्होंने कहा आप नई नई चीज़ें आ गई जो बड़े हो जाएगा, लेकिन उसके लिए एक पीछे, क्योंकि उसके फ्यूम्स होते हैं, मर्करी तो मतलब कातिल चीज़ है, पता नहीं क्यों ये मरकरी डाल रहे थे उस जमाने में, लोहे से किसी तरह से काम चला लेते या कुछ और कर लेते। तो अब जो है वो उसको मैं अब जब भी सोचता हूँ कि इसको निकलवाऊँ मरकरी को और उसकी जगह कोई नए ज़माने की अच्छी चीज़ डलवाऊँ, तो उसमें वो कहते हैं कि जी इसके फ्यूम्स के लिए फिर आपको पीछे एक ना एक सॉकेट सी गले में रखनी होती है ताकि वो फ्यूम्स पीछे की तरफ ना जाएं आगे। अब इस बात से मैंने कहा मराने के चक्कर में, ये पहले भी हम जितने डरे हुए हैं कि दांत साफ कराते कराते बंदे की जान भी जा सकती है, वसीम अकरम की वाइफ याद है ना आपको?
1: हाँ जी,
0: वो डेंटल से ही उनको हुआ था।
1: नहीं अजादला, ये ऐसा अजीब की चीज है कि कुछ भी हो सकता है किसी भी वक्त।
0: गए आप दांत साफ कराने, लेके आप ब्रेन का इन्फेक्शन आ गए तो लोग कहें, लोग कहेंगे, पता लोग क्या कहेंगे, हमें तो पहले से पता था एक नॉर्मल ब्रेन का आदमी ये काम तो नहीं कर सकता जो बोल के लबाजा तो मैं जाते हुए लोग अपनी आंखें कान नाक दे रहे हैं, मेरे किसी काम के तो है नहीं, मैं ब्रेन दे जाऊंगा कि इसको खोलो चेक करो कहाँ पे चोट लगी थी बचपन में, ये जो मैं दरिया में गिरा था घोड़े से और पुल के नीचे से आया था तो वहां तो सट नहीं लगी मेरे सर में ये।
1: अल्लाह ज़्यादा, वो एक अलग वाक्य जो आपने सुनाया था, वो जो आप गिर गए थे,
0: आई वाज जस्ट 1 ईयर ओल्ड, हाँ जी, एक साल का था मैं, घोड़ी पे मैं शेर खान के साथ जा रहा
1: हूँ। अजीब चीजें हुई हैं,
0: पता नहीं, और जो भी हुआ उसके बाद मैं बहुत बीमार हो गया था, मेरी माँ कहती है, तो उसके बाद ना कोई चीज मेरी फिर एलर्जीज नॉर्मल नहीं रही, मुझे हर चीज फिर उसके बाद ही शुरू हुई थी, बट बच गए, उस पानी में सवाल ही नहीं पैदा होता था, एक तरफ दूसरी तरफ वो पत्थरों का पुल था, उसके नीचे कितने बड़े बड़े पत्थर हो सकते थे बच्चे का जो सर, और जो भी मुझे चोट लगी है उसके बाद से शो निकला है शुक्र है मैं
1: शुक्र है
0: कुछ चोटें जैसे कहते हैं ना कुछ दाग अच्छे होते हैं इसी हाँ। तरह कुछ चोटें भी अच्छी होती हैं लगता है अगर प्यार से मारी जाएं और रब की तरफ से ना वो एक लात जो कुब्बे को रास आ गई और उसका हंच जो था ना, वो हंच बैक जो था ना, वो सीधा हो गया।
1: अज़ादा यू आर सच अ ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस, अल्हम्दुलिल्लाह।
0: और बेसिकली ब्लेसिंग्स आप लोग हैं, और आपने अभी जो इतना अच्छा वक्त हमारे साथ गुजारा इसका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज एक स्ट्रेसफुल डे को डी स्ट्रेस करने में अपना तीन मेहरबान लोगों का बहुत बड़ा हाथ था। आज कॉल्स वैसे कम थी, लेकिन मेरा ख्याल है लोग जब आप और हम बात कर रहे होते हैं, और शहनाज जी और हीरा सिंह जी तो फेवरेट लोग हैं लोगों के, तो इनकी डिस्कशन से जो शगुफे फूटते हैं, जो क्लिप्स बनते हैं, और जो शो जिस किस्म का बनता है लोगों को बड़ा पसंद आता है। पिछले तीनों शोज़ जो हैं ये अभी तक बहुत अच्छे रहे, मैं ग्रेटफुल हूँ। और आपको रब जो है वो सेहत और भी अच्छी और बेहतर अता करे, ताकि आप सारे स्वेटर के बटन खुद बंद कर सकें, ठीक है जी, और खुश रह सकें। इसी तरह खनखनाती हुई हंसी, जब आप नहीं थी तो हमने आपका यू आर लिसनिंग टू लेडियो आज़ाद, हेलो हेलो माई डार्लिंग्स, वो सब जो था वो हमने लोगों के गोश गुजार किया और रूहानी तौर पे आपको प्रेजेंट रखा, ताकि आपकी ब्लेसिंग्स जो है ना वो हमारे साथ शो में रह सके।
1: सलामत
0: खुश रहें, ग्रेटफुल। लेडीज एंड जेंटलमैन, इजाज़त चाहते हैं आपसे, वक्त हुआ चाहता है जी कमर्शियल ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपके लिए खबरनामा, खबरनामे के बाद आपका शो, और आज का जो पोम और आपका ट्रैक जो है हम पे उधार रहा अगले शो में। अगला शो इससे बहुत बेहतर होने वाला है। उस शो से पहले हमने कुछ, अभी रमज़ान आने वाला है, रमज़ान में बहुत इंपॉर्टेंट ब्रॉडकास्ट के बारे में हमने आपसे कुछ बातें करनी है, वो भी हम दिसने शो में आपसे करेंगे। कुछ नए टॉपिक्स हमने आपको देने अगले शो के, और बहुत मज़ेदार टॉपिक्स जो पहले कभी किसी रेडियो पर नहीं हुए होंगे, कभी बोल के लब आज़ाद तेरे में नहीं हुए, ऐसे एक दो टॉपिक हैं जिससे जो रिलेटेड है हमारी ऑडियंस से, वो करेंगे हम आपके साथ, कुछ फन क्रिएट करेंगे इन दिनों में, फिर आहिस्ता आहिस्ता टॉपिक्स, और फिर हमने शो से क्या सीखा, और उसके बाद हम ट्रांसफॉर्म कर जाएंगे अपने सीजन 18। ये सीजन 17 आज तक का सबसे लंबा सीजन था, और ये तमाम आप लोगों की मेहरबानियों से हम यहाँ तक पहुँचे। जो भी टूटा फूटा हमने काम किया और आप लोगों ने उसको सलाम किया, उसका आपको बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपको वो बात तो याद होगी जिसकी वजह से ये शो बना, फैला, फला फूला और यहाँ तक पहुँचा। ये करेंगे, सब कुछ हो सकता है अगर ये वो की है। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। और ये याद रखिएगा, ये जो चीज़ हमने एक आपके लिए बनाई है। और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज़ आज़ाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोइम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद। दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।
2: Quran recitation. Continue listening to Inspire FM.
3: Inspire FM.
4: Back to school tips on Inspire FM. Buy your stationery in advance so that you are ready with your equipment for school. You need to get into this good habit of having all your equipment on you so that you are prepared for your job life in the future. Tune in to Inspire FM for more back to school tips.
5: Have you ever asked yourself what you want to become? If you are unsure what to do after school, Barnfield College will help you. Whether you want to learn a trade or go to university, you will find a course that transforms your ambitions into a career. Visit our campus from GCSE Results Day to begin your journey. With our support network and employer connections, Barnfield will set you on the path to becoming you. Find out more at barnfield.ac.uk. Barnfield College. Get September ready.
6: Did you see that guy on TV?
7: What, that No Comment guy?
6: Yeah, he was sick. What was his name?
7: I think it was Atiq Malik.
6: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
8: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
6: Liberty Law, there when you need us most.
9: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests, with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
10: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATs results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
11: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
12: Juggling too much, trying to keep it all together without losing your mind, you deserve some me time. Join me, Neelam, on Mother's Planet every Friday at 10 o'clock on air at 105.1 FM or via our Inspire FM Facebook page. I'll be sharing tips and discussions with my guests on topics from kids, what to cook, health, well-being and lots more for all you special mums. That's Mother's Planet every Friday from 10 a.m. only at Inspire FM 105.1 FM.
13: From the studios of Inspire FM, the time is now 1 o'clock.
14: Assalamu alaikum. We are now going to play the elegant recitation of the Holy Quran by Sheikh Mishari Rashid Al-Fasi, Imam, Quranic reciter and nasheed artist from Kuwait, with English translation.

0: puff. You probably draw an iad. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. اس آیت کے بارے میں ہم سم کچھ اس کے جو لمسات ہیں, اس میں جو باریک نازک حکمت ہے, اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی تمہیدی بات کرنی پڑے گی مجھے. کلام میں, سپیچ میں دو طرح کی, اس کی تقسیم بہت مختلف طریقوں سے کی جا سکتی ہے. ایک تقسیم یہ ہے کہ جو بات واقعی ہو رہی ہے اور جو بات ہونے کا امکان ہے, کون سی بات میں زیادہ زور ہے, جو واقعی ہے یا جس کا امکان ہے. حقیقت ہمیشہ زیادہ پرزور ہوتی ہے امکان سے, ہے نا. کسی بھی زبان میں آپ اپنی بات میں زیادہ زور ڈال سکتے ہو. میں نے کھایا, بے شک میں نے کھایا, میں نے کھایا. زبان اپنی آواز اونچی کر کے یا بے شک کا اضافہ کر کے, یا میں ہی ہوں جس نے کھایا, آپ اس میں کوئی الفاظ کا اضافہ کر کے اپنی بات کو اور زیادہ سے زیادہ سے زیادہ پرزور بنا سکتے ہو. اس کو کہا جاتا ہے توکید. عربی میں سے کہتے ہیں کیا؟ توکید. تو اگر نارمل سی بات ہے تو اس کو کہنے اس کا درجہ ہے زیرو, اس کا ٹیمپریچر نارمل ہے. اس میں آپ پرزور الفاظ ڈالو گے تو اس بات میں آپ اس کا ٹیمپریچر بڑھا رہے ہو اس بات کا, اس پہ اور زور اور زور اور زور اور زور, اور زور. جیسے عربی میں انا کا لفظ ہے, لقد کا لفظ ہے, لا کا لفظ ہے, اور الفاظ ہیں جس سے زور کلام میں زور بڑھتا چلا جاتا ہے, بڑھتا چلا جاتا ہے. اسی طرح کلام میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ ڈالو گے تو بات ویسے تو نارمل تھی لیکن اس بات میں کمزوری آتی چلی جاتی ہے, کمزوری کمزوری کمزوری اور کمزوری اور کمزوری. تو ہم دیکھیں گے کہ اس آیت کے دو حصے ہیں. میں اب اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں, پہلا حصہ اور دوسرا حصہ. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ, اگر کوئی ایسا بھی ہو کہ ان کو چھو لے, کیا چھو لے؟ نَفْحَةٌ, ایک جھونک, مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ, تیرے رب کے عذاب میں سے ان کو ایک جھونک بھی چھو لے, ہوا کی جھونک. لَيَقُولُنَّ, قسم سے بار بار کہیں گے, یا ویلنا, کیا مصیبت ہم پر آ گئی, اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ, ہم ہی تھے جو ہمیشہ ظلم کرتے رہے. دو آیت کے حصے ہیں, پہلا حصہ ہے جھونک والا, دوسرا حصہ ہے کہ وہ کیا کہیں گے. جو پہلا حصہ ہے نا, اس میں اب ہم آبزرو کرتے ہیں کہ اس میں میں اب جو لسٹ بناؤں گا آپ کے لیے کہ اس بات کو کمزور کیا جا رہا ہے, اس کو پرزور کرنے کے بجائے اس کو کمزور کیا جا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کیسے اس کو کمزور کیا جا رہا ہے. پہلی بات ہے ان مستہم, اگر انہیں چھوئے. اگر کہا ہوتا, یہ ٹائپو ہے, اذا مستہم, اذا مستہم, تو کہا ہوتا جب انہیں چھوئے گی. ان اور اذا کا فرق سمجھ لیں. کوئی ماں ہے, اس کا بیٹا باہر بیرون ملک گیا ہوا ہے کام سے, وہ یہ کہتی ہے اگر میرا بیٹا واپس آیا تو میں انڈے پراٹھے بناؤں گی اس کے لیے, یا کہے گی جب میرا بیٹا واپس آئے گا تو میں انڈے پراٹھے بناؤں گی. اگر کہے گی یا جب کہے گی؟ جب کہے گی, کیونکہ جب میں ضمانت ہے, جب میں گارنٹی ہے, جب میں زور ہے اور اگر میں کمزوری ہے. سمجھ میں آئی بات؟ آیت میں کیا استعمال ہوا ہے؟ اگر. اگر تو آیت میں زور کا اضافہ ہوا یا کمزوری کی گئی؟ کمزوری کی گئی, پہلی بات. ٹھیک ہے, اگر چھوا. دوسرا ہے مست کا لفظ. مسا, اس کو عربی میں کہیں گے اقل درجۃ الاصابہ. چھونے کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں, لمسا, مسا, ضرب, بہت سارے الفاظ ہیں عربی میں. چھونے کا سب سے باریک لفظ, یعنی تقریباً نہ چھونے کے برابر چھونا, اس کو مس کہتے ہیں. پتہ بھی نہ چلے کوئی چیز چھوئے, اس کو ہم کہیں گے مس. تو جو لفظ استعمال ہوا ہے نا, وہ کم سے کم سے کم سے کم چھونے کے بارے میں ہوا ہے, یعنی چھونے کا کمزور ترین لفظ اللہ نے استعمال کیا اس آیت میں. اب ایک اور مزید اضافہ ہو گیا اس کلام کی کمزوری میں. ٹھیک ہے, پھر یہاں پر مست کا لفظ جو ہے نا, یہ تمسس نہیں ہے. وَلَئِن تَمْسَسْهُمْ, تمسس ہوتا مضارع کا صیغہ, مضارع. مست ہے ماضی کا صیغہ. اس کو بھی ذرا سمجھ لیں. مثال تو یہاں سکرین پر نہیں ہے, زبانی سمجھانی پڑے گی مجھے. میں کہوں میں نے برگر کھایا, میں نے برگر کھایا, اور میں کہوں میں برگر کھاتا ہوں. ٹھیک ہے, एक तो माजी और हाल का फर्क है, लेकिन एक और फर्क भी है। अगर मैं कहूँ मैंने बर्गर खाया, कितने खाए, कितनी दफा खाया? एक दफा। अगर मैं कहूँ मैं बर्गर खाता हूँ, खाता रहता हूँ, उसमें इस्तेमरार है, बार बार होने वाली चीज है। अगर इन तमसस कहा होता ना तो होता, अगर उनको ये छूती रहे, यानी उसमें एक से ज्यादा दफा का छूना होता। लेकिन यहां है मस्सत, माजी, यानी अगर छुए भी तो कितनी दफा, एक दफा। सबसे कमजोर छूने का लफ्ज, और वो भी हो कितनी दफा, एक दफा, और उसमें भी अगर का इजाफा, मस्सत हो। ठीक, आगे छुए भी तो क्या छुए, उससे पहले एक्चुअली ल इन, अच्छा अल्फाज में है इन मस्सत हम नहीं है, ल इन मस्सत हम है। उसको लामत तौकीद भी कहेंगे, लेकिन अगर ये शर्त पे आए तो मजीद कमजोरी करता है कलाम में। तो इस तरह तर्जुमा होगा, अगर इन्हें कभी छू भी जाए, यानी एक तो है ना, अगर वो आएगा तो मैं उससे बात करूंगा, अगर कभी वो आ भी गया तो मैं उससे बात करूंगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इम्कान है कि वो नहीं आएगा, बात में मजीद कमजोरी आ गई, बहुत सारी कमजोरियां आ गई ना कलाम में। तो ला इन और इन का फर्क यहां पर, ला इन मस्सत हम नफहतुन। अच्छा, फिर नफहतुन नून से है, नफहतुन, और फिर है लफहतुन। अरबी में दो अल्फाज हैं, जब आप दरवाजा बंद करते हो ना तो कभी कभी हवा का झोंका अंदर एकदम से आता है दरवाजा बंद करते हुए, उसको अगर वो थोड़ा सा ठंडा हो तो उसको नफहा नून से कहते हैं, और उसमें थोड़ी सी गर्मी हो तो उसको लफहा लाम से कहते हैं। दरवाजा बंद करते हुए जो झोंक आती है, ठंडी हो तो नफहा और गर्म हो तो लफहा, बारीक सी ठंड, बारीक सी गर्मी। अगर तकलीफ की बात हो रही है तो कौन सी झोंक में तकलीफ है, गर्म में, उसकी शिद्दत में भी कमी कर दी, नफहा का लफ्ज इस्तेमाल किया, लफहा का नहीं। बात हो रही है जहन्नम की, जहन्नम में बात होनी चाहिए गर्म हवा की, लेकिन वहां की सबसे ठंडी तरीन हवा के झोंके के बारे में बात हो रही है। फिर अच्छा, इस कमजोरी के अलावा छूने के एतबार से तीन तरह का मादा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये सॉलिड है, इसको छूना सबसे ज्यादा महसूस होता है, पानी छुए महसूस होता है, हवा अभी भी हमें छू रही है, हर लम्हे छू रही है। सबसे कम एहसास छूने का किस चीज का होता है, हवा का, हवा छू रही है शायद में, इससे कम छूना मुमकिन नहीं है और इससे बारीक छूना मुमकिन नहीं है। मजीद कमजोरी क्योंकि हवा का इस्तेमाल हो रहा है, वला इन मस्सत हम। फिर दूसरी बात, नफहा का लफ्ज मैंने बताया, जब आप दरवाजा बंद करते हो तो हवा आती है, तो इसका मतलब है आप अंदर नहीं आए, वो हवा बाहर निकली है। तो इसका मतलब है ये आयत अभी जहन्नम के अंदर की नहीं है, आप अभी बाहर हो और उसमें से एक झोंक आई और वो एक सेकंड से भी कम आपको जरा सी छू गई, पेरली छू गई, और ऐसे भी नहीं कि पूरी मुंह पर आकर लगी, क्योंकि मस का लफ्ज है तो इतनी बारीक छुई कि इससे बारीक छूना हो नहीं सकता। तो ये अभी जहन्नम के अंदर की बात नहीं है, अभी उससे बाहर की बात है। ठीक, वला इन मस्सतहुम नफहतुन, अगर कहा होता अन नफहतु अलिफ लाम के साथ, अलिफ लाम के साथ, तो वो इस्तिग़राक भी हो सकता है, अल अहदी भी हो सकता है, उसके मायने ये होंगे पूरी झोंक आकर लगी, यानी एक तो ना पूरी उसकी वेव आकर आपको लगी, लेकिन उसका एक थोड़ा हिस्सा हो, पूरी हवा भी ना हो, उस हवा का भी थोड़ा सा एक फ्रैक्शन हो, उसका एक थोड़ा सा हिस्सा हो, उसको कहेंगे नफहतुन, उसमें भी कमी कर दी अलिफ लाम हटाकर। फिर मिन अज़ाब रब्बिक, वला इन मस्सतहुम नफहतुन मिन अज़ाब रब्बिक। अरबी के तालिबे इल्म यहां समझते होंगे, यहां पर मुदाफ मुदाफ इलैह भी बनाया जा सकता था, वला इन मस्सतहुम नफहतु अज़ाब रब्बिक, नफहतु अज़ाब रब्बिक। अगर कहा होता मिन के बगैर तो होता तेरे रब के अज़ाब का एक की एक झोंक, तेरे रब के अज़ाब की झोंक, तो की का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता। अगर ऐसा होता तो चौंक की नस्बत हमारे रब से हो जा, हमारे रब के अजाब से हो जाती। लेकिन दरमियान में एक लफ्ज़ का इजाफा किया गया है, वो क्या है? मिन। मिन से क्या होता है? तेरे रब के अजाब में से यानी एक तबईद, एक फासला कर दिया अजाब के लफ्ज़ और नफ़ा के लफ्ज़ के दरमियान, और उससे इन दोनों की शिद्दत में कमी आ गई, अजाब की शिद्दत में कमी आ गई। मिन, अजाब तो पूरा है लेकिन अजाब में से एक बारीक सी झोंक निकल कर कहीं फिसल के बाहर निकली और वो बेरली उसने तकरीबन ना छूने के बराबर छुआ। नफ़हतुन मिन। अच्छा, अजाब का लफ्ज़ तकलीफ का है, तकलीफ देने का, अजाब देने का। अजाब की कई सूरतें होती हैं, बहुत सारी सूरतें होती हैं अजाब की। आग भी अजाब है, काटना भी अजाब है, किसी को मारना भी अजाब है, मुख्तलिफ अजाब के कोड़े भी अजाब हैं। अजाब तो बहुत सारे हैं। अगर यहां आग कहा होता, मिनन नार, तो फिर हमें हरारत का एहसास होता कलाम में, और फिर हमें हवा की तकलीफ का एहसास होता कि क्योंकि हवा का ताल्लुक आग से है, तो फिर हम जहन में आता कि इस हवा में ठीक है उसकी ठंडी तरीन झोंक है लेकिन फिर भी आग से तो है ना। अजाब के लफ्ज में लाजमन आग का जिक्र है कि नहीं? नहीं। तो फर्ज करो वहां पीछे कोई और टॉर्चर हो रहा है, कुछ हो रहा है, वहां से एक हवा निकल आई, अल्लाह ने इसमें से हरारत, इस कलाम में से हरारत निकाल दी अजाब के लफ्ज इस्तेमाल करके नार के बजाय। अच्छा, अजाब के बाद हो सकता था अजाबी जहन्नम, अजाब फिर आग की बात आ जाती, अजाब नार, नफ़हतुन मिन अजाब नार, नफ़हतुन मिन अजाब जहीम, नफ़हतुन मिन अजाब सईर, उनमें से कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए। अगर ये कह दिया होता नफ़हतुन मिन अजाब अल्लाह अल अज़ीज़ अल मुक़्तदर, अल्लाह के अजाब से, अल्लाह का ही अजाब है, अल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, क्या लफ्ज इस्तेमाल किया है? रब। रब के कितने मायने हैं? मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, क्या है? मालिक, सैयद, मुरब्बी, मुनइम, कय्यम, इसमें मुस्बित मायने हैं या मनफी मायने हैं? बहुत मुस्बित मायने हैं ना रब के अंदर। कलाम हो रहा है मनफी, कलाम हो रहा है मनफी, उसमें आपने बहुत सारे मुस्बित मायने वाले लफ्ज का इजाफा कर दिया, तो उसकी मनफियत में ज्यादती हुई या कमी हुई? और कमी हो गई रब के इस्तेमाल से। अच्छा, रब के बाद भी अगर कहा होता रब्बी हिम, नफ़हतुन मिन अज़ाबी रब्बी हिम, हिम होता उनके रब, जिनको सजा देनी है उनके रब की तरफ से, उनमें इशारा मुजरिमों की तरफ होता, मुजरिम तो कम अज कम मनफी है ना। रब्बी हिम नहीं कहा, कहा मिन रब्बी का, और का की जमीर जा रही है रसूल की तरफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन, उनकी तरफ जा रही। जब रसूल का जिक्र आता है तो अल्लाह ताला की तरफ से रहमत होती है। तो यहां एक अजाब की आयत में आखिरी जमीर अपने रसूल की इस्तेमाल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी मनफियत में और भी शदीद तरीन कमी। मैं ये बात क्यों समझा रहा हूं आपको? एक मुख्तसर सी बात है लेकिन इस तरह समझ लें कि कुरान में, मेरे कम मुताले के हिसाब से कुरान में अजाब की कम से कम से कम शक्ल ये आयत है। इससे कम अजाब की कोई ताबीर मुझे नहीं मिलती कुरान में, शायद हो, मुझे मेरे इल्म में नहीं है। वला इन मस्सतहुम नफ़हतुन मिन अज़ाबी रब्बी का, इससे कम तो मुमकिन नहीं है। और ये जहन्नम के अंदर भी नहीं, अभी जहन्नम से बाहर की बात है, यानी इससे कम ताबीर मेरे नज़दीक मुमकिन नहीं है। लेकिन ये है, अल्लाह ताला ने एक सीन बनाया है हमें समझाने के लिए, और ये कोई बहुत लंबा चौड़ा, जिस तरह कहते हैं ना खालिदीना फीहा, हमेशा हमेशा के लिए, तो वक्त का भी ताल्लुक अजाब से होता है। लेकिन इस आयत में कितना वक्त गुजर रहा है? ना होने के बराबर, छूना ना होने के बराबर, छूना भी हवा का, हवा भी बारीक, उस हवा का जिक्र भी रब और अपने रसूल के साथ मुंसलिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा चलो, इतनी से अजाब तो ठीक है इनको बर्दाश्त करने का, इतनी तो खैर है। अब अगली जो आयत का हिस्सा है उसको समझने से पहले एक मैं आपसे और एक और जगह आपको ले जाता हूँ। कोई मुजरिम होता है, उसको पुलिस पकड़ती है, उसको इंटरोगेशन रूम में डालती है, उसको एक दो थप्पड़ मार के, कहाँ था कल रात? घर पे सो रहा था। सही सही बता, वरना नहीं मैं घर पे सो रहा था। और उसको मार मार के मार मार के मार मार के आखिर में वो जाके कहेगा नहीं मैं उठा हुआ था, मैंने ही खाई थी चॉकलेट। जो भी वो इतराफ करे, कितना टॉर्चर करना पड़ता है और आखिर में जाके वो इतराफ करे है। और जो पक्के मुजरिम होते हैं जिन्होंने बहुत अरसे जुर्म किए होते हैं तो वो और भी पक्के हो जाते हैं, वो कहते हैं मार लो उसका क्या फर्क पड़ता है। इसे मुक्का कहते हैं, तो किसी और को लेके आओ, वो पक्के हो जाते हैं। अब ये इतना इतना बारीक अजाब बाहर से एक्सपीरियंस करने के बाद, इसका तजुर्बा करने के बाद ये मुजरिम क्या करेंगे, इसके बारे में अल्लाह ताला कहते हैं ला यकूलुन्ना, मैं कसम खाता हूं वो कहेंगे बार बार बार बार और बार बार। यकूलुन्ना की जमीर मुदारिह है और मुदारिह इस्तेमाल होता है बार बार के लिए, लाम है कसम के लिए, जो नून आखिर में दो है ना, दो मजीद कसमें, इस तरह कह लो मैं कसम खाता हूं कसम खाता हूं कसम खाता हूं, तीन मरतबा बार बार कहेंगे बार बार कहेंगे बार बार कहेंगे। यकूलूना में चार गुना ज्यादा तौकीद है, यकूलून एक तो मुजारे है, दूसरा उस पर लाम है ये दूसरा दर्जा, फिर एक नून और फिर दूसरी नून, इसको नून थकीला कहते हैं। चार गुना ज्यादा जोर दिया गया है इस एक लफ्ज में, एक लफ्ज में। पहली आयत के पहले हिस्से में जोर ज्यादा दिया जा रहा था या कमजोरी लाई जा रही थी? कमजोरी। अब जैसे ग्राफ है तो ग्राफ नीचे जा रहा है, अब इस आयत के दूसरे हिस्से में ग्राफ ऊपर जा रहा है। क्या कह रहे हैं जी? इन या वैलना, वैल क्या है? वैल अरबी में कहते हैं ऐसी लानत को या ऐसी मुसीबत को या ऐसे अजाब को जिससे बुरा अजाब मुमकिन नहीं। किसी पर कोई ऐसी मुसीबत आए वो कहे इससे बुरा तो हो ही नहीं सकता, उसको अरबी अदब में वैल कहते हैं, या वैली, ओ मेरे साथ जो हुआ इससे बुरा तो हो ही नहीं सकता था। रिवायात में आता है वैल जहन्नम की एक वादी का भी नाम है, और वो ऐसी वादी है जिससे जहन्नम खुद डरती है, उसका भी नाम वैल है। कुरान ने इस्तेमाल किया है वैलुन लिल मुकद्दिबीन वलकुमुल वैलु अला मा तसिफून, वही का लफ्ज़ कुरान में भी जहन्नम के नामों में से इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अच्छा वैल का लफ्ज अभी ये कह रहे हैं बाहर जहन्नम के खड़े हुए कह रहे हैं या वैलना, हम पर तो जो इससे बुरा हो ही नहीं सकता हो चुका हमारे साथ, इससे क्या खराब होगा, अभी वो अतर नहीं किया, अभी वो ये चल रहा है, अंदाजा करो। और उसके बाद ये चिल्लाने के बाद क्या कहता है? इन्ना, अब इन्ना आप यहां पे किसी ने कहा था इन्ना मैं हूं, अब क्या है समझ में आया क्या है? बेशक, बेशक हम, बेशक हम, अच्छा बेशक हम भी बहुत है, उसमें भी बेशक का इजाफा है, ये नहीं नहनु या वैलना नहनु, नहीं बेशक हम, इन्ना का इजाफा। फिर उसके बाद इन्ना वालिमून, ना ना ना, इन्ना कुन्ना वालिमी, कुन्ना है हम हमेशा से ही, हम शुरू से ही, हम शुरू से ही जालिम थे, हम हमेशा से जालिम रहे हैं, हम कब से जालिम रहे। यानी उसने एक जुर्म का एतराफ नहीं किया। मैंने कहा वो सीन बताया था ना फिल्म वाला आपको, जो आप देखते नहीं हो, जो मुजरिम कभी एतराफ करता है जुर्म का, ये बंदा इस मकाम पे खड़ा हुआ एक जुर्म का एतराफ नहीं कर रहा। क्या कह रहा है? मैं हमेशा से जुल्म करता रहा हूं, ये तमाम जुर्मों का एतराफ एक दफा में, कितने लंबे टॉर्चर के बाद टूटा ये कि इसका स्टेमिना टूटा और इसने एतराफ किया। इस जोक के बाद इसने अपनी पूरी जिंदगी के तमाम जुल्मों का एक दफा में एतराफ, रो रो के बार बार बार बार बार बार, ला यकूलुन्ना या वैलना इन्ना कुन्ना वालिमीन, ظالم کا لفظ بھی اسم استعمال ہوا ہے. انا کنہ نظلم بھی ہو سکتا تھا, مضارع بھی ہو سکتا تھا. ظالم ہوتا ہے اسم, اور اسم فعل سے زیادہ قوی ہوتا ہے اور زیادہ ثابت ہوتا ہے. تو یہ بہت ہی پرزور انداز میں اپنے ظلم کا اعتراف کر رہے ہیں, سبحان اللہ. یہود کہا کرتے تھے لن تمسن النار الا ایاما معدودہ, آگ چھوئے گی بھی تو کتنا چھوئے گی, تھوڑے سے دن رہ لیں گے, ایک ویکینڈ ہی تو ہے یار, چلے گا اتنا بھی ہمیشہ کے لیے. لوگ آج کل تو مسلمان بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جہنم ہے ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے نا, ہمیشہ کے لیے تو نہیں, اتنا تو ہے نا کم از کم. قرآن نے اس بات کا بڑا پیارا جواب دیا ہے, تمہیں ہمیشہ کی ضرورت نہیں ہے, ہمیشہ سے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے, یا اس سے تمہیں کوئی تسلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دو دن ہو گئے یا چھ دن ہو گئے یا بس 12 دن ہوگا. تم اس کا ایک سیکنڈ سے بھی کم اس کے باہر کا چکھ لو تو یہ تمہارا یہ جو نشہ ہے نا یہ فوراً اتر جائے گا. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. يا سلام.
1: Subscribe now to the Bayana YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan. Coming up next time on Akhri Mojza.
0: I think you'll enjoy this one. آپ لوگوں کو جنات جن سٹوریز پسند ہیں؟ یہی مسئلہ ہے اس قوم کا. جنات کے بارے میں قرآن نے بات کی ہے, تھوڑی سی جن سٹوری سنتے ہیں, تھوڑی سی قرآن سے جن سٹوری.
2: الحدیث الثامن عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام, فقال اقرأ بها في نفسك, فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل, فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي, وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي, وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي, وقال مرة فوض إلي عبدي, فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل, فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم وكذلك مالك والترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجه.
3: حديث 8 on the authority of Abu Huraira, may Allah be pleased with him, from the Prophet, may the blessings and peace of Allah be upon him, who said, a prayer performed by someone who has not recited the essence of the Quran during it is deficient, and he repeated the word 3 times, incomplete. Someone said to Abu Huraira, even though we are behind the Imam, he said, recite it to yourself. For I have heard the Prophet, may the blessings and peace of Allah be upon him, say, Allah, mighty and sublime be He, has said, I have divided prayer between myself and my servant into 2 halves, and my servant shall have what he has asked for. When the servant says, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Allah, mighty and sublime be He, says, my servant has praised me. And when he says, Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah, mighty and sublime be He, says, my servant has extolled me. And when he says, Maliki Yawm al-Din, Allah says, my servant has glorified me. And on one occasion he said, my servant has submitted to my power. And when he says, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, he says, this is between me and my servant. And my servant shall have what he has asked for. And when he says, Ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim, غير المغضوب عليهم ولا الضالين, he says, this is for my servant. and my servant shall have what he has asked for. It was related by Muslim, also by Malik, At-Tirmidhi, Abu Dawood, An-Nasai, and Ibn Majah.
4: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
5: Inspire FM.
4: Inspire 105.1 FM.
6: Did you know? Honey never spoils. You could eat 3,000-year-old Egyptian tomb honey.
7: Hair loss, acne, scarring, eczema, joint pain, keloids, anti-aging. Whatever the concern, your treatment should start with medical expertise. Aesthetics Central Luton, a medical clinic specializing in regenerative medicine, advanced aesthetics and doctor-led procedures from PRP, PRF, GFC and exosomes to skin pen microneedling, peptide facials, chemical peels, laser hair removal, joint repair, blood tests. 8 years of success and over 200 five-star Google reviews. A beautiful new location with free on-site parking. Your private medical care has never been easier to access. Visit us at Aesthetic Central.
8: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
9: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years' experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
10: Every day, Allah invites us to stand before Him. 5 moments to leave the world behind, to find peace, to seek forgiveness, to pour out our heart to the one who knows it better than we do. But how well do we truly know the prayer that defines our faith? Join Brother Sabir and Mufti Salman and Rehan on Inspire FM's brand new Salah series as they explain the beauty, wisdom, and practice of Salah through ways we've never imagined. Listen live every Friday, 5 till 6 p.m., or catch up anytime on the Inspire FM app, inspirefm.org, or YouTube and Facebook. The Salah series on Inspire 105.1 FM.
11: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
12: حق کی آواز کبھی دبتی نہیں, کبھی جھکتی نہیں, کبھی مٹتی نہیں. اعتدال, حریت فکر اور سچائی کا پرچم. آئیے سنیے وہ آواز جو دلیل سے لبریز, قرآن و سنت کی روشنی سے منور اور حق کی گواہی دیتی ہے. میں ہوں امام حافظ اعجاز احمد, آپ کے سامنے پیش کروں گا پروگرام آوازہ حق میں, حق کی آواز. ایک ایسا پیغام جو دلوں کو بیدار کرے, ذہنوں کو روشن کرے. ہر سوموار 11 بجے اونلی آن انسپائر ایف ایم 105.1.
13: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
1: Last time on Akhri Mojza.
0: Yahud kaha karte the, لن تمسن النار الا ایام معدودة. آگ چھوئے گی بھی تو کتنا چھوئے گی, تھوڑے سے دن رہ لیں گے, ایک ویکنڈ ہی تو ہے یار, چلے گا اتنا بھی ہمیشہ کے لئے. لوگ آج کل تو مسلمان بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جہنم میں ہمیشہ کے لئے تو نہیں ہے نا, ہمیشہ کے لئے تو نہیں, اتنا تو ہے نا کم از کم. قرآن نے اس بات کا بڑا پیارا جواب دیا ہے, تمہیں ہمیشہ کی ضرورت نہیں ہے, ہمیشہ سے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے, یا اس سے تمہیں کوئی تسلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 2 دن ہو گئے یا 6 دن ہو گئے یا 12 دن ہوگا. تم اس کا 1 سیکنڈ سے بھی کم اس کے باہر کا چکھ لو, तो ये तुम्हारा ये जो नशा है ना ये फौरन उतर जाएगा। وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ। يَا سَلَامُ।

0: होगा, तो उनको एक पूरा नया अकीदा घड़ना पड़ा। क्यों, किस वजह से, कि ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़े हुए हैं। अब वो ऐसे पकड़े हुए हैं कि बाइबल के अंबिया को भी उनको नज़र नहीं आते, तो इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनफरादी, क्योंकि उनका मसला इनफरादी है, एक फ़र्द से ताल्लुक़ है, तो रसूल की इनफरादी हैसियत से कहा गया कुल, आप कहिए इनसे, आप कहिए इनसे। दूसरी चीज़ जो ईसाइत के बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, वो कहते हैं कि ईसा ने, अल्लाह ताला ने माज़ल्लाह अपने बेटे को ज़िबा किया ताकि तमाम इंसानियत के गुनाहों की कीमत उसका खून अदा करे। ये उनका अकीदा है, इंसानियत के गुनाहों की कीमत क्या है, खुदा के बेटे का खून। अच्छा, इस अकीदत की बुनियाद पर उन्होंने कहा कि ना सिर्फ हमारे सारे गुनाह माफ़, लेकिन ईसा के आने से पहले अगर इंसान ने पाक होना था ना, तो उसके पाक होने का तरीका था अल्लाह के अहकाम को मानना, कानून, अल्लाह की दीवी शरीयत, मूसा को दीवी शरीयत, हफ्ते के दिन ये नहीं करना, ये है जो कोशर के अहकाम है, हलाल हराम के अहकाम जो दिए हैं, ये तमाम इसको वो कहते हैं द लॉ, शरीयत बेसिकली। तो इंसान की पाकीज़गी का रास्ता क्या था, शरीयत, शरीयत पे अमल करेगा तो पाक होगा। लेकिन अब क्योंकि ईसा का खून आ गया, तो उसकी वजह से हम सारे क्या हो गए, पाक तो हो गए, अब उस शरीयत की कोई ज़रूरत नहीं रही, उसकी ज़रूरत अब नहीं रही, अब उस पर अमल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसके बमुकाबिल अब ईसा अलैहिस्सलाम का खून है। तो इसलिए हम ईसा की शरीयत को नहीं मानते, हम हलाल हराम की तमीज़ नहीं करते, अब वो तमाम अहकाम जो पहले थे वो अब ज़ाया हो चुके हैं उनकी कुर्बानी की वजह से, ये इनका अकीदा है। अच्छा, अरबी में लफ्ज़ अला इस्तेमाल होता है ज़िम्मेदारी के लिए, फिर से कहता हूँ, अला का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ज़िम्मेदारी के लिए, लिल्लाही अलन्नासी हिज्जुल बैत, लिल्लाही अलन्नासी हिज्जुल बैत, अल्लाह की खातिर लोगों पर ज़िम्मेदारी है कि घर का हज करें। ज़िम्मेदारी के लफ्ज़ के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, अला, अलैकुम अनफुसकुम, तुम सबको अपनी ज़िम्मेदारी संभालनी है, अलैकुम अनफुसकुम। आजकल भी अरबी में अगर आप बात करते हैं तो कहते हैं अलैया अन उसल्ली, मुझे नमाज पढ़नी है, मुझ पर ज़िम्मेदारी है कि मैं नमाज पढ़ूँ, अलैया अन अज़हब अलआन, मुझे अब जाना पड़ेगा, मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं अभी जाऊँ, यानी यजिबु अलैया, अलैया महदूफ़, उसके पीछे एक फ़ेल है, तो अलैया के माने हैं ज़िम्मेदारी। क्योंकि ईसाइयों ने कहा कि अब शरीयत की ज़िम्मेदारी हम पर नहीं है, अल्लाह ताला उनसे कहलवाते हैं, अल रसूल से कहलवाते हैं, इनसे कहो हम उस पर ईमान लाए जो हमारे ऊपर नाजिल हुआ। अला का लफ्ज़ किस बात की तरफ इशारा है, ज़िम्मेदारी की तरफ, यानी हम पर जो ज़िम्मेदारी नाजिल हुई, हम पर जो नाजिल हुआ ज़िम्मेदारी होने के नाते, जिस पर हमने अमल करना है, वमा उन्ज़िला अला इब्राहिम, और जो इब्राहिम पर ज़िम्मेदारी की तरह के तौर से नाजिल हुआ, और फिर उसके बाद व इस्माईल व इसहाक व याकूब व नस्बात, लेकिन फिर एक और फ़र्क भी आ गया आखिर में, कहा वमा ऊतिया मूसा व ईसा व नबीयून, तीनों को इकट्ठा, जो मूसा को दिया गया, ईसा को दिया गया और तमाम अंबिया को दिया गया, सबको इकट्ठा कर दिया है ना। लेकिन पिछली आयत में, यहूद वाली आयत में क्या कहा था, वमा ऊतिया मूसा व ईसा और फिर वमा ऊती नबीयून, बाकियों को अलग कर दिया। इसकी भी बड़ी अहमियत है, बनू इसराइल के पहले शरीयत देने वाले नबी कौन हैं, मूसा, और आपको शायद इल्म में हो शायद ना हो, ईसा अलैहिस्सलाम उनके आखिरी रसूल हैं, और उनको भी वही शरीयत दी गई, ना सिर्फ उनको इंजील दी गई, उनको तौरात दोबारा दी गई और फिर इंजील दी गई, वह युअल्लिमुहुल किताब वल हिक्मा वत्तौरात वल इंजील, यानी मूसा पे तो तौरात नाजिल की, लेकिन तौरात में इतना बिगाड़ लाया जा चुका था कि ईसा अलैहिस्सलाम को दोबारा तौरात दी और फिर इंजील भी थी, वह युअल्लिमुहुल किताब वल हिक्मा वत्तौरात वल इंजील। तो शरीयत, यानी जो उनकी खास خصوصیات ہیں بنی اسرائیل کی، وہ موسیٰ سے شروع ہوتی ہیں اور عیسیٰ پر ختم ہوتی ہیں. وہاں ان کی بات ہو رہی تھی ان کے خاص ہونے کی، تو ان کے خواص کو ایک طرح سے پیراگراف کے اندر اور پیرنتھسس کے اندر ڈال دیا، ادھر سے وما اوتیا، ادھر سے وما اوتیا، اور باقی تمام انبیاء پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، وما اوتیا النبیون من ربہم. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ کے بعد تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، عیسیٰ کے بعد تو کوئی، عیسیٰ الگ باقی سارے الگ، یہی ایمان ہے نا ان کا. سارے انبیاء ایک طرف، یہاں تک کہ ساری مخلوق ایک طرف، عیسیٰ ایک طرف. اللہ تعالیٰ نے کلام میں ایسے عیسیٰ کو پیش کیا کہ وہ ایک بہت بڑے تسلسل کا حصہ ہیں، ان کی کوئی خاص تمیز نہیں کی جا سکتی. کہا وما اوتیا عیسیٰ موسیٰ و عیسیٰ والنبیون، سب کو ملا کے، تمام انبیاء کو ملا کے، کیونکہ یہ سبق سکھایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی الگ مقام مت رکھو، وہ بھی اس تسلسل کا حصہ ہیں. یہاں تک کہ ہمارے نبی سے بھی کہا گیا تھا قل ما کنت بدعا من الرسل، ان سے کہہ دو میں کوئی نئی ایجاد نہیں ہوں رسولوں میں سے، جیسے باقی رسول آئے تھے ویسے ہی میں بھی ہوں. ما کنت بدعا من الرسل.
1: Subscribe now to the Bayana YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan. Coming up next time on Akhri Mojza.
0: I think you'll enjoy this one. آپ لوگوں کو جنات جن سٹوریز پسند ہیں؟ یہی مسئلہ ہے اس قوم کا. جنات کے بارے میں قرآن نے بات کی ہے، تھوڑی سی جن سٹوری سنتے ہیں، تھوڑی سی قرآن سے جن سٹوری.
2: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: Why do Tops Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Tops use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Tops Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, topspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582
4: 725000. In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
5: Lee Grave Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specializing in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
6: Assalamu alaikum. Calling all young brothers age 16 and under. Have you ever dreamed of giving the azan on Inspire FM? Use these school holidays to learn the beautiful words of the azan and practice every day. When you feel confident and ready, we'd love to hear from you. Simply WhatsApp us on 0777 981 822, and we'll invite you to our studios to professionally record your azan. Your recording could then be played on Inspire FM, inspiring thousands of listeners across our community, inshallah. Start practicing today. We look forward to hearing your azan.